यार से दिन ची संगलां जी देना तारीख ले संदेह जी दे जो यंग तिचुल मंबुश की में कतना जिंतरंग आती लमा परो डोमारा कंसंग कमोनी के लंबी साशंग तुम मंडी सांडी रेस को नोगर दर्क न्यामुं दी ठोनी पाचना बिगुंज को जो यल तेरंग ले संदेह कर सोंडू पातं सोंडिंग गांग कर पास हरं राशी तं ताकल पास गु चचुप ताकल पाग नटक सरं तं सोंड